0: साई अल्लाह की रहमत का है हमारी जिंदगी, मेरे मौला की संगत में ही तो बसी है हमारी खुशी। तेरी नजरों की रजा हमारे जीने की वजह है साई, ऐ परवरदिगार आलम ये जिंदगी है तेरी मोहताज।
1: तेरी रहमत से है जिंदगी, तेरे रहम से है नसीब, हम अगर तुझको ना देखे तो ये सांसें भी देती हैं तकलीफ। तेरी रहमत को बयां करने में कम पड़ते हैं अल्फाज, ऐ मालिक ऐ परवरदिगार ये जिंदगी है तेरी मोहताज।
0: करिश्मायत तेरे करिश्मों की, रंगत तेरे नूर की, रहम की गुजारिश करते हैं हम इबादत, मेरा ईमान सब कुछ है तेरे हवाले, ऐ परवरदिगार आलम ये जिंदगी है तेरी मोहताज।
1: तेरे नजदीक है सुकून, तेरे चरणों में है जन्नत, तेरे दीदार से महरूम न कर बस यही मन्नत, ऐ परवरदिगार हम कुछ ऐसा बने कि हो तुझको हम पे नाज, ऐ परवरदिगार आलम ये जिंदगी है तेरी मोहताज, है तेरी मोहताज, है तेरी मोहताज।

शब्द स्वर ताल लय साहित्य एवं प्राण की धात्री साईं मां की अर्चना।

भगवान बाबा की कथा अनुसार सर्वधर्मों का मूल मंत्र प्रेम प्रेम सच्चा प्रेम ही तो है। प्रभु प्राप्ति का इससे सुगम और सरल उपाय इस विश्व में और कुछ भी तो नहीं है।

0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: डू नॉट पे हीट टू व्हाट अदर्स माइट से व्हाइल एंगेज्ड इन सर्विस एक्टिविटीज व्हेन यू आर डूइंग गुड एक्ट्स व्हाई हेजिटेट व्हाई फील अशेम्ड एंड व्हाई फियर Let compassion and sacrifice be your two eyes. Let egolessness be your breath and love be your tongue. Let peace reverberate in your ears. These are the five vital elements you have to live upon.

परैत पाली। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Homage to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one.